0: जनानां प्राणाः रक्षिताः। कैप्टन मछार इत्यनेन प्रधानमन्त्रिणे स्वस्य अनुभवस्य विस्तृत विवरणं प्रदत्तम्। सममेव घटनाक्रमे तस्मै साहस कुतः प्राप्तमिति कथितम्। प्रधानमन्त्री तस्य साहसं प्रशंसितवान्, तस्य शीघ्र स्वास्थ्यलाभाय शुभकामनाः च अयच्छत्। श्रीमोदी अवदत् यत् सम्पूर्ण राष्ट्रं तस्य स्वास्थ्यलाभाय प्रार्थनां करोति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् कैप्टन स्मितः साहसेन यथा समयं उचित निर्णयेन क्षमताया धैर्येण च जनानां प्राणान् अरक्षत्। प्रधानमन्त्री स्मितस्य साहसस्य प्रशंसां कुर्वन् अवदत् यत् देशः गर्वेण वक्तुं शक्नोति यत् भारतीयाः प्राणान् रक्षितुं स्वजीवनं संकटे स्थापयितुं सज्जाः भवन्ति। वार्तालापस्य समये भावुकः स्मितः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तस्य सर्वाधिकः आदर्शः अस्ति, अथ च प्रधानमन्त्रिणः दूरभाषसंवादं प्रति गौरवानुभूतिः प्रकटिता।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आपने सबसे बड़ा एक्ट्रेस और मेरे को मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
0: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अमेरिका देशस्य मिल्वोकी नगरे G20 वाणिज्य मंत्रीणां सम्मेलनस्य समापन दिने वैश्विक व्यापार विकृतिभ्यः निवारणार्थं WTO इत्यस्य अनुरूपं कार्याचरणाय आह्वानम् अकरोत्। संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमतायाः उत्पादनस्य च विषये प्रवदन् श्री गोयलः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य द्रुतगत्या वर्धमाना बृहत् अर्थव्यवस्था अस्ति, यत्र देशीय याचनाधारित अर्थव्यवस्था 4.1 अरब जनानां सेवां करोति। सः अवदत् यत् भारतस्य विनिर्माण क्षमतया तस्य देशीय वैश्विक आवश्यकतां पूरयति, तथा च भारतस्य G20 अध्यक्षेन अभिधीयमानेषु क्षेत्रेषु संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नास्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स् पटले HAIR न्यूज़ अलर्ट्स् इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति वाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
0: केन्द्रीय पत्तन नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ह्यः भारतीय नौवहन निगमं भारतं स्वावलंबी कर्तुं नौकायान निर्माणस्य समुद्रीय क्षमतायाः च वैश्विक स्पर्धात्मकतायां च प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुं आह्वयत्। पंजाब राज्य सीमा सुरक्षा बलेन ह्यः तरनतारन क्षेत्रे द्वौ पाकिस्तानी अवैधजनौ मारितम्। BSF इत्यस्यानुसारं ते अवैधरूपेण सीमायां प्रति आगतवन्तः। एशियन गेम्स क्रीडा महाकुंभे ह्यः भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडकैः मल्लस्पर्धिभिः धनुर्धरैः च स्वर्ण पदकानि 6 पदकानि विजितानि इति वार्ताः।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विश्वसनीय रूप से डिजाइन और विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिल्वॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन समारोह में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की, प्रगति पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने रोबोटिक सर्जरी समिति के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स, AI और नैनो विज्ञान से

0: टीक तथा जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं का नया तंत्र विकसित होगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय नौवहन निगम से देश को जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। श्री सोनोवाल कल निगम के 65 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा में भारतीय नौवहन निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। नौसेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। सम्मेलन में नौसेना की तैयारियों, रसद, रखरखाव, प्रशिक्षण और मानव संसाधन प्रबंधन पर चर्चा हुई। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही स्वायत्त और चालक रहित प्रणालियों पर भी चर्चा हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने तकनीक को तेजी से अपनाते हुए सेमीकंडक्टर, एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की क्षमताएं मजबूत करने की आवश्यकता बताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल में नौसेना में शामिल युद्ध पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 500,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा कि 90% से अधिक महिला श्रमिकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाले 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया है कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू हो गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापानी एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला कुश्ती, हॉकी और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।
2: आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको समाचार प्रसारणपछि आकाशवाणी खरसाङ केन्द्रमा फेरि पनि हाम्रा समस्त श्रोता साथीहरूलाई स्वागत अभिवादन जनाउँदछौ अनि अघिल्लो क्रममा प्रस्तुत गरिरहेका छौ शुभप्रभात कार्यक्रममा बिहानी सूचनामा अलैचीको खेती सम्बन्धी केही जानकारी, त्यसपछि कुमार सुब्बाको स्वरमा केही आधुनिक गीतहरू पनि यहाँहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ। त श्रोताहरू पहिले लागौ अलैचीको खेतीतर्फ। अलैची मसलाहरूको रानी आफ्नो स्वाद र सुगन्धको निम्ति विश्वमा विख्यात छ किनभने विभिन्न प्रकारका खाद्य वस्तुहरू, मिठाई आदिमा सुगन्धको निम्ति र औषधिको काममा प्रयोग गरिन्छ। अलैची दुई थरीका हुन्छन्, बडा अलैची र छोटा अलैची। छोटा अलैचीको खेती दक्षिण भारतका राज्यहरू जस्तै केरला, कर्नाटक र तमिलनाडुको पश्चिमी घाटमा गरिन्छ भने बडा अलैचीको खेती निम्न हिमाली क्षेत्र, सिक्किम, दार्जीलिङ र केही मात्रामा उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा गरिन्छ। बाहिरका देशहरू जस्तै नेपाल, भूटानमा पनि धेरै मात्रामा अलैचीको खेतीहरू गरिन्छ। बडा अलैची यस अञ्चलको मुख्य नगदी फसल हो। भारतवर्षमा सबैभन्दा ज्यादा उत्पादन सिक्किममा हुन्छ, त्यसपछि आउँछ दार्जिलिङ जिल्ला। दार्जिलिङ, पूर्वी नेपाल, भूटान र उत्तर पूर्वीय राज्यहरूमा अलैची सिक्किमबाट नै फैलिएको हो भन्ने विश्वास छ। अलैचीलाई चिसेनी ठाउँ चाहिन्छ, मलिलो निसाइलो सधैँ चिसो रहने माटो जहाँ प्रशस्त मात्रामा जङ्गली पत्करहरू कुहेर मिसिएका हुन्छ त्यस ठाउँमा अलैची खुबै राम्रो सप्रन्छ। पानी जम्ने ठाउँ र सिममा अलैची सप्रन्दैन, त्यसर्थ अलैचीको निम्ति पानी बग्ने ठाउँ अथवा जमिन चाहिन्छ। यसलाई सिँहाल वा छारी पनि चाहिन्छ। जंगली रुखका छहारीमा यो वर्ष छहारीको लागि उत्तिस, काउलो, पिपली, कपाली, खरानी, झिगनी, घुर्पिस, नेबारो, खन्युका रुखहरू असल हुन्छ। 600 मिटरदेखि लिएर 2000 मिटरसम्म जहाँ वार्षिक वृष्टिपात 1500 मिलिलिटर र 3500 मिलिलिटरसम्म हुन्छ त्यस ठाउँमा अलैँचीको असल खेती गर्न सकिन्छ। बेसी तुसारो अनि असिना अलैँचीले सहन गर्न सक्दैन। तुसारो र असिनाले अलैँचीलाई क्षति पुर्याउँछ। त भर्खरै श्रोताहरूले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो बिहानी सूचनामा अलैँचीको खेतीबारे केही जानकारी।

0: भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। कहा इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
2: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
5: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
6: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1094 ड्रोन वितरित किए इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं सवाई माधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है
7: मेरा नाम पूजा जाधव है ग्राम पंचायत शामपुरा डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था जब से मैं ड्रोन

0: में सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रूपए तक की इनकम कर ली।
1: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मित मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मित, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास, सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India calls for WTO-compliant measures to address trade distortions, dumping and predatory pricing. G7 countries agree to release 100 million barrels of diesel and crude oil as prices climb record high in United States. United Nations welcomes India's Green Energy Corridor Phase 3, says it will strengthen India's position as global leader in solar energy. Union Cooperation Minister Amit Shah to lay foundation stone for 255 crore rupees dairy plant in Ujjain today with processing capacity of 3 lakh litres of milk per day. And in Asian Games, Indian archer Kumkum Mohor clinches gold in recurve event. Indian men's hockey team to clash for gold against Malaysia. And now the news in detail. India has called for WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers' meeting in Milwaukee, U.S. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India shares the concerns of many members that trade-distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. He said such concerns are addressed through WTO consistent measures, including anti-dumping and countervailing duties based on evidence and subject to judicial review. He emphasized that industrial capacity in itself is not the issue, while distortions can arise where geographical concentration of production is driven by hidden subsidies and support. We have a report.
6: Commerce Minister Piyush Goyal highlighted that India's trade with G20 members depends on a transparent, non-discriminatory and rules-based trading system. He said most favored nation treatment is a key guarantee of this system, ensuring that the same terms apply to the smallest trader and the largest trader. Speaking on ending forced labor in global supply chains, Mr. Goyal said India's commitment to the elimination of forced labor is absolute and unconditional. The minister reaffirmed India's commitment to a rules-based, fair, equitable, non-discriminatory, transparent, open, inclusive and multilateral trading system with the WTO at its core. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
5: The group of seven G7

0: बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: सोल्जर यस फिल्मबाट लिएका छौँ कार्यक्रमको यो अघिल्लो गीत। अल्का याग्निक अनि कुमार सानुको एकल आवाजमा, अनु मल्लिकको सङ्गीत अनि समीरको शब्दहरूमा।

0: স্থান নিশ্চিত করার পাশাপাশি ব্যক্তিগত রিকার্ভে এশিয়ান গেমসে পদকজয়ী প্রথম ভারতীয় মহিলা হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন কুমকুম। গতকাল পুরুষদের 65 কেজি ফ্রিস্টাইল ইভেন্টে স্বর্ণপদক জেতেন ভারতীয় কুস্তিগির সুজিত কালকাল। মহিলাদের 65 কেজি বিভাগে চাইনিজ তাইপের নীলেন চিন চেনকে ফাইনালে হারিয়ে পারভিন হুদা ও পুরুষদের 80 কেজি বিভাগে দক্ষিণ কোরিয়ার কিম মিন্স ওয়ংকে হারিয়ে অঙ্গোস পাঙ্ঘাল স্বর্ণপদক জয় করেছেন। ভারতের তারকা মহিলা বক্সার লাভলিনা বরগোহাঁই 75 কেজি বিভাগে সোনা জিতেছেন। উল্লেখ্য, দুর্দান্ত পারফরমেন্সের সুবাদে ভারত এ পর্যন্ত 17টি সোনা, 25টি রূপো এবং 35টি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে সামগ্রিক পদক তালিকায় পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে। এই মুহূর্তে তাদের মোট পদকের সংখ্যা 77। এদিকে এশিয়ান গেমসে পুরুষদের ক্রিকেটের ফাইনালে ভারত আজ পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে। জাপানের নিসিনের করগি স্পোর্টস পার্কে খেলা শুরু ভারতীয় সময় সকাল 10টায়। কলকাতার যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আজ ভারত ও ব্রাজিল ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে। খেলা শুরু সন্ধে 7:30। এই ম্যাচকে ঘিরে জনমানসে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। একটি প্রতিবেদন,
1: এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছে কলকাতা। আজ সন্ধ্যায় আলোকোজ্জ্বল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ব্রাজিলের মহাতারকারা ভারতের বিরুদ্ধে বল পায় মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে আরও একটি সোনালী অধ্যায় সংযোজিত হতে চলেছে। আর সেই সন্ধিক্ষণের প্রত্যাশায় উত্তাপে ফুটছে ফুটবল মহল। ভারতীয় দলের কোচ খালিদ জামিল জানিয়েছেন,
2: नमस्कार, यो आकाशवाणी खरसाङ हो। अब प्रादेशिक समाचार सविता क्षेत्रबाट सुन्नुहोस्। गान्धी जयन्तीको अवसरमा हिज पर्यावरण, वन अनि जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादव तथा राज्यको मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले अलिपुरद्वारको बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट अन्तर्गत बक्सा वनमा एउटा बगिनीलाई छोड्नु भएको छ। यो कदम भारतमा बाघ संरक्षणको लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो अनि वन्यजीव सप्ताहको उपयुक्त शुरूआत हो। यो ऐतिहासिक कदम बक्सा बाघ क्षेत्रमा बाघहरूको आत्मनिर्भर जनसंख्याको पुरानो दिन फर्काउने उद्देश्यले चरणबद्ध बाघ पूर्ण प्रवेश कार्यक्रमको शुरूआतको प्रतीक पनि हो। केन्द्रीय मन्त्री भूपेन्द्र यादवले सोशल मीडिया पोस्टमा भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भूदृश्य संरक्षण अनि प्रजाति संरक्षणको प्रयासहरूद्वारा प्रेरित भएर बक्सामा बाघहरूलाई पुनस्थापित गर्ने वाचाले पूरा गरिएको हो। संस्कृति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरिएको उपहारको 8 औ ई निलामी अवधि बढाएर यस महिनाको 31 तारिक गरिदिएको छ। यसपटकको ई निलामीमा दिल्लीको विविधता अनि विरासतलाई दर्शाउने 30 अलग अलग स्मृति चिन्ह सामेल गरिएको छ। यसमा 9 फोटो फ्रेम, 9 स्मृति चिन्ह तथा 6 मूर्ति अनि प्रतिमाहरू सामेल छन्। यसबाहेक दिल्ली मेट्रोको 2 मोडल, खेलसित जडित एउटा स्मृति वस्तु, धार्मिक वस्तुहरू, एउटा पेन्टिङ, कलाकृतिहरू अनि हस्तशिल्पसित जुडेका सामान अनि निलामीहरूको भाग रहेको छ। निलामीबाट प्राप्त राशि नमामि गंगे परियोजनामा दिनेछ। पूर्ण जानकारी आधिकारिक पोर्टल pmmomentos.gov.inबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। सम्पूर्ण राज्यमा हिजदेखि 3 दिवसीय विशेष जनकल्याण शिविर सेवा सेतु अभियानको शुरूआत भएको छ। यस अभियान अन्तर्गत साधारण मानिसहरूले राज्य अनि केन्द्र सरकारको विभिन्न सामाजिक योजनाहरूको लाभ उठाउनका लागि सोझै आवेदन गर्न सक्नेछन्। हालसम्म अन्नपूर्ण योजना सहित अन्य सामाजिक योजनाहरूमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न नसकेका मानिसहरूलाई यस विशेष शिविरको माध्यमबाट अझ एक अवसर प्रदान गरिनेछ। यो अभियान प्रतिदिन बिहान 11 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म सञ्चालित भइरहेको छ। शिविरहरूमा सरकारी अधिकारीहरू उपस्थित रहनेछन्, जसले अन्नपूर्ण योजना, प्रधानमन्त्री आवास योजना, शिक्षाश्री, जय जोहार, पीएम किसान क्रेडिट कार्ड अनि पीएम किसान निधि जस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरूको फारम जमा गर्न अनि आवश्यक सेवाहरू प्रदान गर्ने कार्यहरू गरिरहेका छन्। यसैबीच अन्नपूर्ण योजनाको पैसा प्राप्त नभएको विषय लिएर हिज मालदा अनि कुचबिहारमा सरकारी शिविरहरू बाहिर महिलाहरूले आक्रोश व्यक्त गरेको खबर प्राप्त भएको छ। मालदाको हरिश्चन्द्रपुरमा एक समूहका महिलाहरूले भिडियो विरूद्ध अन्नपूर्ण योजनाको आवेदनलाई लिएर आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गरे। मालदाको रतुवा 2 ब्लकमा सरकारी सहायता शिविरमा तोडफोडको आरोप पनि महिलामाथि लगाइएको छ। अर्कोतर्फ कुचबिहारमा पनि महिलाहरूले सरकारी शिविरमा गएर आर्थिक सहायता प्राप्त नभएको विषय लिएर आक्रोश व्यक्त गरेको बताइएको छ। मौसम विभागले दार्जीलिङ पार्वतीय क्षेत्रका केही स्थानहरूमा आगामी 24 घण्टासम्म हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताएको छ। मौसम विभागले कालेबुङ

माँ, उंगलियों में बहुत ही दर्द होने लगा है। एक समय था जब मैं दिन भर बिना रुके वायलिन बजाता रहता था। एस्टेला मेरा मजाक भी उड़ाया करती थी, कहती थी ये वायलिन मेरी दूसरी पत्नी है। लेकिन पिछली बातें याद करने से क्या फायदा, अब तो ना रही उमराव जान और ना ही उसकी शान। बूढ़ा हो गया हूं, हाथों में दर्द होता है, कांपने लगते हैं, रात बहुत हो चुकी है, अब दवा की गोली खाकर सो जाता हूं। कमल ने कहां रखा होगा मेरा गिलास और गोली। मिंगेल गोली ढूंढ रहा है, अब किसके लिए जीना चाहते हो, किसे तुम्हारा इंतजार है? अब किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है मिंगेल। एस्थला वो तो चली गई, और तुम्हारे बच्चे रॉबर्ट और एंजेला अपनी अपनी गृहस्थी में जुट गए हैं, व्यस्त हैं। अब किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं रही मिंगेल, किसी को भी नहीं। ए भगवान, गिलास टूट गया। आजकल नजदीक की चीजें भी ठीक तरह से दिखाई नहीं देती, ये टुकड़े इकट्ठा करने में भी डर सा लगता है। अगर कांच का एक भी टुकड़ा हाथ में लग गया और खून बहने लग गया तो कौन है यहाँ पर मेरा ध्यान रखने वाला? अगर आज मेरी अस्थिला होती तो अस्थिला के चाचा ये गिलास की सुंदर जोड़ी अफ्रीका से लाए थे, ये गिलास टूट गया, अस्थिला चली गई। आज दूसरा गिलास टूटा तो जैसे मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। पर अब मुझे कौन मनाएगा, कौन समझाएगा? ग्यारह बज गए पर नींद तो कोसों दूर है, पास आने का नाम ही नहीं लेती। कमल हाँ, सुबह 7 के पहले कभी आई है क्या? और दामबाब, उसका एक निश्चित समय है, 10 बजे। अब ये सारा समय कैसे बिताऊं मैं? ठीक है, सवेरा होने का इंतजार करता हूँ।

0: पापा।
1: अरे कमल तू आ गई।
2: पापा ये गिलास कैसे टूटा?
3: वो
2: और ये क्या, कल मेज पर रखी हुई दवा की गोली वैसी की वैसी?
3: वो
2: ऐसा क्यों करते हैं आप पापा? डॉक्टर ने क्या कहा है आपको मालूम है ना?
1: हाँ हाँ मालूम है।
2: कि ये गोलियां आपको हमेशा लेनी है, दिन में दो बार, सुबह और रात को। सुबह तो मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन आप ही बताइए रात को मैं कैसे दूंगी? आपको चलने में तकलीफ होती है, ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देता, इसलिए मैंने गिलास और गोली यहीं पर इस अल्तार के सामने मेज पर रखी थी।
1: ओ पर कमल वो
2: गिलास तो टूट गया। खैर आपने आपने ये गोली भी नहीं खाई, ऐसा कैसे चलेगा पापा? पापा आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? अगर आप ऐसे ही हंसते रहे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ
1: अरे पगली पगली कितना ख्याल रखती है तू मेरा। थोड़ी सी कमजोरी होने के कारण डॉक्टर ने गोलियां दी है बस। अरे भूल से अगर एक गोली नहीं ली तो मुझे कुछ नहीं होने वाला।
2: हाँ मालूम है।
1: अच्छा अच्छा एक एक एक बात बता कमल, परसों तुमने गोली कहाँ रखी थी और उसके एक दिन पहले की गोली?
2: देखिए देखिए पापा, आपने लगातार 3 दिन गोली नहीं ली, फिर कहोगे हाथ पांव कांपते हैं, दिल की धड़कन तेज हो रही है। पापा पापा अगर आप ऐसा ही करेंगे ना तो मैं कल से नहीं आने वाली। हाँ
1: ओ मेरी माँ। अच्छा अच्छा एक अमल, तू क्या हमेशा के लिए मेरे पास रहने वाली है? अरे पगली आज न कल तेरी शादी होगी, तू अपने पति के घर चली जाएगी अपने पापा को अकेला छोड़कर।
2: अगर ऐसा है तो मैं शादी ही नहीं करूंगी।
1: पगली कहीं की।
2: लगता है पाव वाला आ गया, आपके लिए क्या लू, नरम पाव या सख्त पाव?
1: बड़ा सख्त पाव ही ले लो। अरे रुको कमल।
2: हाँ
1: सख्त ब्रेड नहीं नरम ब्रेड ले लेना।
2: अच्छा ए पाव वाले आज नरम पाव ही देना, पापा आज वही चाहते हैं।
4: मिंगेल पाव। अरे मिंगेल पाव गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे आज ये घड़ी बंद पड़ गई क्या?
4: अरे नहीं नहीं मिंगेल बाब नहीं।
1: घड़ी में अभी 9 ही बज रहे हैं इसलिए मैंने।
4: मिंगेल बाब तुम्हारी घड़ी एकदम ठीक चल रही है, वो मैं ही आज जरा जल्दी आ गया।
1: ओ आओ आओ बैठो बैठो। बताओ तुम्हारी माँ कैसी है?
4: ठीक है अच्छी है।
1: अरे ये क्या दूल्हे की तरह सज धज कर आए हो, एकदम चकाचक हैं, एकदम सफेद धोती शार्क स्किन का कोट काली टोपी और हाथ में चांदी की मूठ वाली ये चमकदार छड़ी। क्यों क्यों दाम बाब इरादा क्या है?
4: अरे कुछ नहीं मंगेल बाब, अरे कुछ नहीं, आज जरा दूर जाना है।
1: दूर कहाँ?
4: वो हमारे महेश के लिए एक रिश्ता आया है, आज हम लड़की देखने जा रहे हैं। हमने सोचा इस अवसर पर जरा ठाट बाट से जाएं तो अच्छा है। क्यों?
1: बिल्कुल ठीक कहा।
4: हमारी घरवाली कह रही थी आज मत जाओ।
1: अच्छा
4: लेकिन मैंने कहा एक बार भगवान के माथे पे फूल चढ़ाना भूल जाओ, लेकिन ये दामू मिंगेल बाप के घर गए बिना कभी नहीं रहेगा।
1: अरे कहाँ गया?
4: क्या ढूंढ रहे हो?
1: अखबार। अखबार कहाँ होगा कमल? अरे अखबार कहाँ है कमल?
2: ये लीजिए आपका अखबार पापा।
4: कमल तू अखबार पढ़ती है?
2: नहीं नहीं ऐसे ऐसे ही देख रही थी।
1: कमल तू पढ़ना जानती है?
2: थोड़ा थोड़ा पापा, बिल्कुल अनपढ़ नहीं हूँ, 4th class पास की है मैंने।
1: अच्छा, अच्छा। तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली कमल है। ये लो दाम बाब, ये लो अखबार और पढ़कर बताओ कि क्या कहती है हमारी सरकार।
4: सुनो 5 लाख खर्च करके गिरवंडे में नया रास्ता बनाने वाली है हमारी सरकार।
1: अच्छा,
4: वेरी गुड। आज से मडगांव में देश की पहली स्काई बस सेवा शुरू होने वाली है। अच्छा है। बिहार में धुआंधार बारिश के कारण बाढ़ के प्रकोप से 150 के ऊपर लोगों की मृत्यु।
1: हे भगवान, ये क्या हो रहा है?
4: बस्तोड़ा में ओल्ड एज होम जगह खरीद कर काम आरंभ। इसके बारे में आगे जानकारी इसी अखबार में दी जाए।
1: अरे अरे, जरा रुको दामबाबू, जरा रुको। देखो, खबर पढ़ने से पहले जो खबर पहले पढ़ी थी ना, वो जरा फिर से पढ़कर सुनाओ।
4: वो चलती हुई बस में?
1: अरे नहीं, वो नहीं, वो ओल्ड एज होम को
4: हाँ, अच्छा, बस्तोड़ा में ओल्ड एज होम बूढ़े लोगों के लिए सब तरह की सुविधाओं से युक्त घर बनाना है। जमीन खरीद कर घर बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है। यही खबर ना, या कोई और दूसरी?
1: हाँ, यही खबर। हाँ, इसके बारे में और कुछ नहीं दिया है डिटेल में?
4: नहीं, ठहरो। लेकिन हाँ, ये लिखा है कि इसके बारे में आगे की जानकारी इसी अखबार में दी जाएगी।
1: ये अखबार वाले भी कोई खबर ठीक से नहीं देते।
4: लेकिन मिंगेल बॉब, तुम्हें क्यों चाहिए इस तरह के घर के बारे में ज्यादा जानकारी?
1: जाम बॉब, अरे अभी तो तुम हो, कमल है, लेकिन बाद में कमल के जाने के बाद मेरा क्या होगा, ये भी तो सोचने की बात है ना।
4: अरे क्यों चिंता करते हो मिंगेल बॉब, कमल गई तो क्या? अरे हम है ना, देखो आपके पापा के हम पर जो उपकार हैं उन्हें चुकाना इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। खैर छोड़ो, छोड़ इन बातों को, मुझे देर हो रही है, घरवाली इंतजार कर रही होगी। चलता हूँ कमल।
1: अच्छा, जरा संभल कर जाना।

0: लगता है ये आ गए।
1: कितनी देर हो गई मालूम है?
2: अरे अंदर तो आने दो, अब तुम्हें क्या बताऊं।
1: क्या हुआ?
2: मिंगेल बॉब के मन में कोई पागलपन सा भर गया है।
1: पागलपन?
2: हाँ, वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम के बारे में पूछताछ कर रहे थे।
1: हे भगवान, उन्हें क्या पड़ी है वृद्धाश्रम की? उनके अपने बाल बच्चे हैं, बड़ा महल जैसा घर है, और अगर कभी किसी की जरूरत पड़े तो हम हैं ना, हम उन्हें क्या बिना सहारे रहने देंगे?
2: यही यही तो मैंने भी कहा, अपने बच्चों के पास जर्मनी जाने को तैयार नहीं। कहते हैं मैं गोवा छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं, यहाँ की मिट्टी ने मेरी जड़ें पकड़ रखी है, पूरी जिंदगी यहाँ पर बिताई है मैंने। अब तुम ही कहो, आदमी को कुछ सोचना चाहिए।
1: हाँ वो तो है।
2: तो अब चलें, हमें देर हो रही है। महेश कहाँ है?
1: वो बस स्टैंड पर हमारे इंतजार करेगा।
2: तो चलो जल्दी से निकल।
1: हाँ, चलो चलो जल्दी से।

0: पापा आज मैं जरा जल्दी ही जाऊंगी। हाँ
1: क्यों, अभी तो 4 ही बजे हैं, इतनी जल्दी कहाँ जाना है?
0: पापा वो
1: अच्छा अच्छा, इतना शर्मा क्यों रही है? तुम्हें भी कोई लड़का देखने आने वाला है क्या है?
0: हाँ पापा, कल मुझे आने में जरा देर होगी, लेकिन आप कुछ करिएगा मत, मैं आने के बाद सब काम कर डालूंगी। पापा वो गैस पर दूध रखा है गर्म करने के लिए, थोड़ी देर के बाद गैस बंद कर देना।
1: हाँ हाँ, कर दूंगा कर दूंगा। हाँ तुम चलो बेटी, है घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, देखो संभल कर जाना। हाँ
0: अच्छा,
1: जा, हाँ जा जा। गई आज जल्दी गई, कल शादी करके अपने पति के घर चली जाएगी और मैं इस घर में अकेला रहूंगा। ये हवाई जहाज हर दिन इसी समय पे आता है और चला भी जाता है, लेकिन आज मुझे इसकी आवाज अखरने लगी है। आज अक्टूबर की 10 तारीख है, 3 दिनों बाद मेरा बर्थडे है। मिंगेल के बर्थडे के दिन पूरा घर जैसे हंसता खिलखिलाता था।
2: मंगेल बाब, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ।
1: थैंक यू
0: बाब, दिस प्रेजेंट इज स्पेशली फॉर यू।
1: और सुनिए, बिना कुछ खाए पिए मत जाना।
2: थैंक यू
1: लेकिन ये लाने की क्या जरूरत थी? थैंक यू
2: ये
1: रिकॉर्ड एस्थिला ने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था। एस्थिला का दिया हुआ रिकॉर्ड अब कहाँ होगा? कहीं होगा भी तो मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? ये बुढ़ापा बहुत बुरा है। हे भगवान, दूध जल गया। आजकल यही सब होता है मेरे साथ, कुछ याद ही नहीं रहता। हो 5 बज गए, समय कैसे बीतता चला जाता है पता ही नहीं चलता। कोई मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ? बीती हुई यादें तो मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं।
3: मिंगेल बाब, कहाँ खो गए थे?
1: अरे कहीं नहीं। लो मेरा अखबार पढ़ो।
3: लाओ लाओ। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। सुनो, गोवा को एक मॉडल राज्य बनाने का सरकार का सपना, भविष्यकालीन ऊर्जा की कमी को ध्यान में रखते हुए गोवा की जनता को अभी से सौर ऊर्जा के उपयोग पर जोर देना चाहिए।
1: जोर देंगे बॉब, देंगे, लेकिन दाम बॉब। अभी तक उस ओल्ड एज होम के बारे में और खबर नहीं आई।
3: ओहो, क्या है मिंगेल बॉब, आएगी, जरूर आएगी, इतनी जल्दी भी क्या है? एक बार खबर छपी है तो उसके बारे में और ज्यादा जानकारी भी जरूर देंगे। उन लोगों ने जैसा लिखा है वैसा वो जरूर करेंगे।
1: हाँ। लेकिन क्या करूं मैं, मन भी तो नहीं लगता ना।
3: हाँ, अरे पर तुम क्यों चिंता करते हो मिंगेल बॉब, वो खबर जरूर आएगी, और जब आएगी तो वो खबर तुम तक मैं, मैं पहुंचाऊंगा।
1: ठीक है, मेरे बुढ़ापे का अब वही एक आधार है, वही सहारा है। दाम बॉब, क्या हुआ, एकदम रुक क्यों गए?
3: मिंगेल बॉब, अब अखबार वाचा

0: का काम खत्म। अब सिर्फ संपादक का नाम और उसका फोन नंबर पढ़ना बाकी है।
1: आज 23 दिन हो गए उस ओल्ड एज होम के बारे में और कोई खबर नहीं आई अखबार में। सुनो, कुछ दिन पहले बेटे के रिश्ते की वजह से तुम 2-3 दिन हमारे यहाँ नहीं आए थे, उन दिनों तो वो खबर नहीं छपी।
0: नहीं नहीं मिंगेल बाब, खबर नहीं आई। देखो, मैं अपने बेटे के रिश्ते के कारण व्यस्त था, फिर भी ओल्ड एज होम की बात मैं भूला नहीं था। रात के 12 बजे तक जाग जाग कर पूरा अखबार पढ़ लेता था।
1: अच्छा,
0: उस दिन के बाद आज तक कोई भी खबर नहीं छपी है उसके बारे में।
1: ऐसे कैसे चलेगा, कैसे चलेगा दाम बॉब? कल कमल की शादी होगी, वो अपने पति के घर चली जाएगी और फिर मैं यहाँ पर अकेला हूँगा, एकदम अकेला। दाम बॉब, अब किसी भी हालत में जैसे भी हो तुम्हें उस खबर की ज्यादा जानकारी लेनी ही पड़ेगी। वो ओल्ड एज होम बस्तौड़ा में है ना?
0: हाँ।
1: तुम्हारी जान पहचान वाला कोई नहीं है क्या उधर?
0: अरे बस्तौड़ा?
1: हाँ?
0: अरे इतने दिनों से ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई?
1: कौन सी बात?
0: अरे मिंगेल बॉब, हमारे महेश की होने वाली पत्नी मयंडे की तो है।
1: तो?
0: अरे वहां से बस्तौड़ा ज्यादा दूर नहीं है। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पूरी खबर लाता हूँ। कल ही महेश को लेकर वहां जाता हूँ।
1: ठीक है।
0: वहां कोई तो बताएगा, अगर देखो नहीं भी पता चला तो वहां के अखबार का संपादक तो अवश्य बताएगा।
1: हाँ हाँ, अब तुम जाओ, पूरी खबर लेके जल्दी आना। हाँ?
0: मिंगेल बाब, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ।
1: ओब्रिगाद, ओब्रिगाद, थैंक यू।
0: नो मेंशन, नो मेंशन।
1: कमल?
2: हाँ।
1: दाम बाब अभी तक नहीं आया, आज 3 दिन हो गए उसे, न जाने कहाँ भटकता होगा वो। कमल, मैंने तुम्हें कहा था ना उसके घर जाकर देखने को।
2: हाँ पापा।
1: तो फिर?
2: उनके घर पर ताला लगा हुआ है, शायद सब लोग कहीं गए हुए हैं। पर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं पापा?
1: अरे वो ओल्ड एज होम की खबर अखबार में कब की छप चुकी होगी।
2: पापा, मैं अखबार पढ़ दूं?
1: तुम?
2: हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है।
1: तुम पढ़ना चाहती हो, पढ़ लो पढ़ लो।
2: ठीक है, पढ़ती हूँ। सरकार ने गरीब जनता के लिए एक नई योजना जाहिर की है। पापा, पापा, मैं आप समय बस को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है।
1: क्या?
2: चारों की वही मृत्यु हो गई। देखिए, देखिए ना पापा।
1: बंद करो।
2: एक्सीडेंट का बस का फोटो भी छपा है, देखिए ना पापा।
1: ओ, मैं कहता हूँ बंद करो, बंद करो। ये खबरें हमेशा मृत्यु की खबरें, हर दिन वही समाचार। जो खबर मुझे चाहिए वो कभी आती ही नहीं। कमल, तुम जानती हो बस्तौड़ा में बूढ़े लोगों के लिए एक घर बनाने वाली है सरकार।
2: अच्छा?
1: हाँ, उसके बारे में कुछ लिखा है क्या अखबार में? देखना। अरे उसके बारे में कुछ खबर आई है, देख कहता हूँ मैं।
2: देखती हूँ।
1: हाँ।
2: पापा, वैसे तो कोई खबर नहीं छपी।
1: चलो बंद कर लो अखबार, और ये सूप का बोल भी ले जा।
2: पापा, आधा सूप वैसा ही है।
1: अरे नहीं चाहिए मुझे, पेट भर गया मेरा।
2: ऐसा क्यों करते हैं आप पापा?
1: चलो अंदर चलो
2: पापा।
1: अरे जाओ तुम। ओल्ड एज होम, बूढ़े लोगों का घर, कब मुझे वो खबर मिलेगी? ये दाम बाब कब आएगा, कब खबर लाएगा ओल्ड एज होम की? ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम।
2: फातरपे के मेले के लिए बसों की विशेष व्यवस्था।
1: वो क्यों?
2: बहुत भीड़ होती है ना पापा, इसलिए ये ठोस कदम उठाया गया है।
1: अरे 10 बज

0: इसका मतलब जब दाम बाप नहीं आया, कहीं पाताल में तो नहीं छुप गया।
1: कांदोले में एक बूढ़े व्यक्ति के घर डाका डाल के 4 लाख का।
0: ये दाम बाप घर का पता लगाने गया है या नया घर बनवाने गया है?
1: पापा पापा, दाम बाप आपका काम किए बिना नहीं रहेंगे, कहीं फंस गए होंगे या कोई जरूरी काम आ गया होगा।
0: हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना दाम बाप यहाँ आए बगैर कभी नहीं रहता। उसे उसे कुछ तो खबर मिली होगी, वो उसी के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होगा। हाँ
1: ए भगवान,
0: कमल अरे क्या हुआ? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इस दीवार से नहीं। कमल अरे क्या हुआ? कमल रोती क्यों है? अरे अखबार में क्या ढूंढती है?
1: घर घर दामोदर पुरुषोत्तम पापा, मैं आगे नहीं पढ़ सकती पापा।
0: अरे ये अखबार क्यों फेंक दिया तुमने, और इस तरह से क्यों रोए जा रही है? तुझे क्या हुआ है कमल?
1: पापा वो दवा की गोली लेना मत भूलना।
0: कमल अरे कमल क्या हुआ? अरे क्या, कहाँ जा रही हो तुम? कमल गई, चली गई। ये बच्चे भी ना कभी कभी पागलों जैसी हरकतें करते हैं। अब अखबार मुझे ही पढ़ना होगा। ये छोटे छोटे अक्षर पढ़ने में तकलीफ होती है, ठीक तरह से दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं दूसरों से पढ़वाता। परसों मापसा में जो बस का अपघात हुआ था, उसमें घायल हुए दामोदर पुरुषोत्तम इस संसार में क्या? दाम बाप चला गया, इस संसार से चला गया। मैंने इस मिंगर ने भेजा उसे अपने घर की तलाश में, मेरे घर की खबर लाने, और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी मौत का कारण मैं, उसका दोस्त ही उसकी मौत का कारण बना। ए भगवान, ये तुमने क्या किया? भरे हुए घर से उठाकर दाम बाप को तुम अपने घर ले गए। फाइनल डेस्टिनेशन, उसे उसका शाश्वत घर मिल गया। कमल कमल शादी करके अपने पति के घर चली जाएगी, मेरे अपने बच्चे रॉबर्ट और एंजेला उन्होंने अपनी अपनी इच्छा से अपना अपना घर ढूंढ लिया, और अस्थिला को उठाकर तुम अपने घर ले गए। और मैं ओ गॉड, तुमने मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला। मेरे लिए कोई घर नहीं,

0: अब आपको अगले
1: प्रश्न। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की सहायता से जरूरत से अधिक उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के अंतर्गत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत वापस लाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब ब्रिक के नाम से तुर्की की नागरिकता लेकर अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित करवाया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रणवी ने देश के लिए गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली वे भारतीय महिला भी बन गई हैं। तीरंदाजी में आज सुबह कुमकुम मोहोद ने महिला सिंगल्स रिकर्व में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी को शूट ऑफ में पराजित किया। इसके अलावा आज दोपहर पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक के लिए भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे। इससे पहले कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और वर्ष 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया। उधर कुश्ती में सुजीत कलकल ने पुरुषों के 65 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बॉक्सिंग में परवीन हुड्डा, अंकुश पंघाल और लवलीना बोरगोहेन ने भी स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। वहीं क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। भारत पदक तालिका में 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित कुल 77 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोता संगीतको यात्रालाई अवश्य नै निरन्तरता दिनेछौ र कार्यक्रमबाट अहिलेलाई भने विदा माग्दै फेरि पुनः उपस्थित हुनेछ 12:05 कार्यक्रम तपाईँको अनुरोधमा र अबको अघिल्लो प्रस्तुति
1: आकाशवाणी समाचारको साथमा मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंट्स सीमा पार कराधान नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमरीका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह 9:43 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। हिंगोली जिला प्रशासन ने निवासियों से शांत रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 2002 में शिव कपूर ने पुरुष स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन पर खेल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

0: Air Force continuing focus on promoting Make in India. Team Shakti, the Indian Air Force's premier all-women air warrior drill team, will also perform on the occasion. Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: This is Akashwani giving you the news.
2: Stay in the know wherever you are. Follow us on X and Threads at AIR News Alerts.
1: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana.
3: In the field of health security, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is a fully government-funded health assurance scheme. Under this, eligible families receive a health cover of up to 5 lakh rupees every year. The scheme offers cashless treatment facilities for secondary and tertiary care in empaneled public and private hospitals across the country. Pre-hospitalization expenses for up to 3 days and post-discharge expenses for up to 15 days are also included. Pre-existing conditions are covered from day one of the scheme. There is no limit on family size, age, or gender under the scheme. Eligible beneficiaries can avail of the benefits at any empaneled hospital in any state across the country, meaning beneficiaries are not restricted to their home state for treatment. Furthermore, all senior citizens aged 70 years and above, regardless of their income or socio-economic status, are eligible for a health cover of up to 5 lakh rupees under Ayushman Bharat PMJ.
4: 1 year pehle, mummy ka kuch problem hua tha gynae case, to hum bahar bhi gaya tha dikhane ke liye. यहाँ भी दिखाया था तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पाता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से तो सर लोग ने बोला था कि ये में हो जाएगा ऑपरेशन जो कार्ड भी आपका पास है ना नहीं पूछा था हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के तो फिर हम अपना ऑफिस में सी एफ में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया SSR है तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जोरन हॉस्पिटल से ही हुआ था.
1: 5 Indian nationals were rescued after a Kuwait flag tanker was struck by a projectile in the Strait of Hormuz. The Indian embassy in Oman said in a post on X today that it coordinated the rescue of the 5 Indians on board the MT Kazima 3, who were safely brought ashore. The mission thanked Omani authorities for their continued support and assistance during the rescue operation. The group of 7 G7 nations have agreed to release 100 million barrels of oil over 4 months in an effort to ease soaring fuel prices, with a substantial release of diesel planned in the first 20 days. The decision came as diesel prices in the United States climbed to record levels, adding pressure on President Donald Trump and his administration ahead of November's midterm elections. Mr. Trump said that European countries had agreed to release large quantities of diesel from their stocks and the process would begin immediately. The G7 and partner countries will make a coordinated release of 100 million barrels over 4 months, with a substantial amount of diesel to be released during the first 20 days. The United Nations has welcomed India's approval of the 1.86 lakh crore rupees Green Energy Corridor Phase 3, describing the grid strengthening and battery storage scheme as a major step that will deliver big dividends for the country's people and economy. In a statement to a news agency, UN Climate Change Executive Secretary Simon Steele said the initiative would help India harness its growing renewable energy capacity, meet rising electricity needs, and further strengthen its position as a global leader in solar energy. An earthquake measuring 4.5 on the Richter scale was recorded at around 9:43 a.m. today in Pangra Shinde area of Vasmat Taluka in Hingoli district. According to preliminary information, the first tremor measuring 3.3 magnitude was recorded at around 7:47 a.m. A stronger tremor of 4.5 magnitude followed at 9:43 a.m., after which a series of smaller tremors were reported. In Nepal, at least 6 people were killed and 10 others injured today when a bus overturned in Gandaki province. Police said the Kathmandu-bound bus had 18 passengers on board, including the driver, when it overturned in the Daune area of Nawalparasi district. The injured passengers were taken to provincial hospital for medical treatment. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh for the day. IMD has also said that conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, most parts of Gujarat and Madhya Pradesh. In Asian Games, India won the gold in men's cricket, defeating arch rivals Pakistan in the T20 cricket final at Nishin, Japan today. India won the final by 19 runs, chasing India's target of 212 runs. Pakistan managed to score only 196 for 6 in their stipulated 20 overs. Earlier, India posted 211 for 6 after opting to bat first. Opener Abhishek Sharma scored 61 of 28 balls, while Tilak Varma remained unbeaten on 51 of 22 balls. Shivam Dubey added 27 of 14 balls to take India past the 200-run mark. With this, India has secured its 81st Asian Games medal, including 19th gold to the tally. India has also won 26 silver medals and 36 bronze medals already. In men's cricket, India were 3 for 1 in 2.3 overs against West Indies in the third and final ODI in Mulanpur, New Chandigarh, when reports last came in. In men's hockey, defending champions India will take on Malaysia, with the two teams meeting at the Gifu Prefectural Green Stadium with eyes on the gold and an LA 2028 Olympics quota. The match will start at 3:30 p.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government developing entire ecosystem based on cattle farming, giving push to rural economy, says Union Cooperation Minister Amit Shah. Commerce Minister Piyush Goyal says India's free trade agreements to cover 75% of world economies. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completes 12 years today. 5 Indian nationals rescued safely after Kuwait flagged tanker struck by projectile in Strait of Hormuz. And on the final day of Asian Games, Indian men's cricket team bags gold with 19-run win over Pakistan in finals. In men's hockey finals, India to take on Malaysia in a short while. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
6: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
5: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गोशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
5: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
8: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अधिकांश, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या GDP देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप विकसित देश, और उन सब की अगर GDP का आंकड़ा ले तो वो 7 ट्रिलियन डॉलर हो जाए।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
5: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है, इस बात की जानकारी देंगे।
9: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5,00,000 रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
1: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि ये में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपका है ना नहीं है पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में सी में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जोरन हॉस्पिटल से ही हुआ था।
2: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
3: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
2: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
4: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाडन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल SP सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहें, X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले

0: ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कार्यक्रम गीत संगीतको प्रस्तुतिपछि अब भने समय भएको छ समाचारको।
1: नमस्कार, यो आकाशवाणी हो, समाचार देवेन थापाबाट सुन्नुहोस्। मुख्य समाचार। गृहमन्त्री अमित शाहले आज भोपालमा गौपालकहरू अनि नयाँ आपराधिक कानूनसहित सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू गर्नुभएको छ। रिजर्भ ब्याङ्कको गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले मूल्य अनि वित्तीय स्थिरतालाई भू राजनीतिक अनि भू आर्थिक फी खण्डन व्यापार प्रतिबन्धहरू आपूर्तिमा अचानक आएको अवरोध अनि तकनिकी व्यवधानहरूबाट अलग हेर्न सकिँदैन भनी बताउनुभएको छ। भारतीय वायुसेनाको 94 स्थापना दिवस आगामी 8 अक्टोबरको दिन मनाइनेछ। भारत अनि वेस्ट इन्डिज बीच चलिरहेको 3 म्याचको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलाको तेस्रो अनि अन्तिम म्याच आज चण्डीगढमा जारी छ। अनि मौसम विभागले आन्ध्र प्रदेश, केरल, माहे, तामिलनाडु, पुडुचेरी, कराइकल, उपहिमालय, पश्चिम बङ्गाल अनि सिक्किममा भोलि गर्जनको साथ वर्षा हुने सम्भावना व्यक्त गरेको छ। अब समाचार विस्तारमा। गृहमन्त्री अमित शाहले आज भोपालमा गौपालकहरू अनि नयाँ आपराधिक कानूनहरूसित सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू गर्नुभएको छ। सुन्नुहोस् एक रिपोर्ट।
2: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रिजर्व ब्याङ्कको गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले बताउनुभयो, मूल्य अनि वित्तीय स्थिरतालाई भू राजनैतिक अनि भू आर्थिक विखण्डन व्यापार प्रतिबन्धहरू आपूर्तिमा अचानक आएको अवरोध अनि तकनिकी व्यवधानहरूबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। आज नयाँ दिल्लीमा 5 कौटिल्य आर्थिक सम्मेलनमा गभर्नरले यसो भन्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, विश्वले कोभिड महामारी सहित अन्य चुनौतीहरूलाई दृढतासित सामना गरेको छ। श्री मल्होत्राले बताउनुभयो, एउटा स्थिर अनि स्वस्थ वित्तीय प्रणाली बिना आर्थिक विकासको क्षमता प्राप्त गर्न सकिँदैन। उहाँले भन्नुभयो, स्वस्थ ब्यालेन्स सिट अनि गैर ब्याङ्किङ वित्तीय कम्पनीहरूलाई समर्थनद्वारा भारतीय वित्तीय प्रणाली धेरै सुदृढ छ। श्री मल्होत्राले भन्नुभयो, विनियमहरूको उद्देश्य एउटा यस्तो वित्तीय प्रणालीको निर्माण गर्न हो जो पर्याप्त पुँजीकृत, तरल अनि सुव्यवस्थित होस् जसद्वारा चुनौतीहरूको सामना गर्न सकियोस्। उहाँले भन्नुभयो, यसको उद्देश्य जोखिम प्रबन्धन अनि आर्थिक विकासलाई समर्थनबीच सन्तुलन स्थापित गर्नु हो। गभर्नरले जोखिमको प्रारम्भिक पहिचानको निम्ति आधुनिक उपकरण, डेटा विश्लेषण, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी अनि विषयगत आङ्कलनको उपयोगमाथि पनि जोड दिनुभएको छ। भारतीय वायुसेनाको 94 स्थापना दिवस आगामी 8 अक्टोबरको दिन मनाइनेछ। यस वर्षको समारोहको विषय भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग अनि सटीक रहेको छ। सुन्नुहोस् एक रिपोर्ट।
3: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल

0: श्रोताहरू, अबको केही क्षणमा नै आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समप्रसारित गरी सुनाइरहेछौँ हिन्दी समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 4 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं हॉकी में भारत और मलेशिया के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3-1 की बढ़त बना ली है। पदक तालिका में भारत 20 स्वर्ण 26 रजत और 37 कांस्य सहित 83 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शानदार प्रदर्शन के लिए पदक विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
2: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस ले आई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT Kazima 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर विस्फोट में 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य निर्धारित गतिविधियों पर रोक है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3रा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 37वें ओवर में 5 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा ने 92 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन बनाए। श्रृंखला में भारत ने 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: समाचारपछि पुनः स्वागत छ। श्रोताहरू, हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौँ। म कार्यक्रम प्रस्तुता चन्दन थापा, मेरो साथमा हुनुहुन्छ प्रसारण सहयोगी स्मिता। श्रोताहरू, यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ आकाशवाणी खरसाङको 103.5 मेगाहर्जको तरङ्गमा। दार्जिलिङका श्रोताहरूले यस कार्यक्रमलाई सुन्न सक्नुहुनेछ आकाशवाणीको 100.2 मेगाहर्जको तरङ्गमा। साथै प्रसार भारतीको ओटिटी वेब्स अनि न्युज अन एआइआर एपमा पनि यस कार्यक्रमलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोताहरू, अब पालो भएको छ कार्यक्रम जय जवानको। हाम्रा फौजी दाजुभाइहरूका निम्ति समर्पित यस कार्यक्रममा अबको क्रममा सुनाइरहेका छौँ केही मिठा हिन्दी फिल्मी गीतहरू। त श्रोताहरू, प्रस्तुत छ यो पहिलो गीत फिल्म बोर्डरबाट।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: यो कार्यक्रम को प्रायोजक रहेको थियो कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
4: दर्शकों खबरदार अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें
5: आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से
6: श्रोताहरू अबको क्रममा आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट समय प्रसारित गरी सुनाइरहेछौँ समाचार

0: प्रणालीको संरक्षणमा विषयमा समेत भारतको धारणा प्रस्तुत गर्नेछ। केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले आन्ध्र प्रदेशको रेएलसीमा प्रस्तावित ग्लोबल हर्टिकल्चर हबले बागवानी क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउँदै किसानका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले हिजो अन्नमया जिल्लाको मदनपल्लेमा ग्लोबल हर्टिकल्चर हब परियोजना र इन्डियन स्कुल अफ एग्रिकल्चरको शिलान्यास गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबु नायडू र उपमुख्यमन्त्री पवन कल्याणको पनि उपस्थिति रहेको थियो। मन्त्री सीतारमणले आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक खेती, जल व्यवस्थापन र पूर्वाधारमा जोड दिँदै केन्द्र र राज्य सरकारले मिलेर आन्ध्र प्रदेशलाई प्रमुख बागवानी केन्द्रका रूपमा विकास गरिरहेको बताउनुभयो। 10 जिल्लामा फैलिने परियोजना अन्तर्गत आँप, केरा, टमाटर र अनार लगायतका बालीलाई प्रवर्धन गरिनेछ। G7 राष्ट्रहरूले बढ्दो इन्धन मूल्य र आपूर्ति दबाव कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी IEA को समन्वयमा 4 महिनाभित्र 10 करोड ब्यारल तेल तथा इन्धन भण्डार बजारमा ल्याउने निर्णय गरेका छन्। G7 को संयुक्त वक्तव्य अनुसार प्रक्रिया तत्काल सुरु हुनेछ र पहिलो 20 दिनमै ठूलो परिणाममा डिजेल बजारमा ल्याइनेछ। यसमा G7 सदस्य राष्ट्र तथा साझेदार देशहरू सहभागी हुनेछन्। अमेरिकामा डिजेलको मूल्य हालसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेपछि यो निर्णय गरिएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली देशहरूले आफ्नो डिजेल भण्डारणबाट ठूलो परिणाममा इन्धन बजारमा ल्याउने र प्रक्रिया तत्काल सुरु हुने बताउनु भएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युएल म्याक्रोको अध्यक्षतामा भएको G7 को आपतकालीन भिडियो बैठकपछि यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो। G7 ले तेल तथा इन्धनको निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाउने प्रतिबद्धता पनि दोहोऱ्याएको छ। हर्मुज जल डमरू मध्येमा कुवेती झण्डा रहेको तेलवाहक पानी जहाजमाथि प्रक्षेप्य प्रहार भएपछि जहाजमा सवार 5 भारतीय नागरिकको सुरक्षित उद्धार गरिएको छ। ओमानस्थित भारतीय दूतावासले आज सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत दिएको जानकारी अनुसार दूतावासको समन्वयमा MT काजी महा तृतीयमा रहेका 5 भारतीय नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा किनारमा ल्याइएको छ। जापानमा जारी एसियाली खेलकुदमा भारतले अहिलेसम्म 21 स्वर्ण, 27 रजत र 37 काँस्य गरी 85 पदक जित्दै पदक तालिकाको 4थ स्थानमा पुगेको छ। आज भारतले पुरुष T20 क्रिकेटमा पाकिस्तानलाई 19 रनले पराजित गर्दै स्वर्ण जितेर उपाधि रक्षा गरेको हो। त्यस्तै प्रणवी उर्सले महिला व्यक्तिगत गल्फमा भारतका लागि पहिलो स्वर्ण, कुमकुम अनिल मोहडाले महिला व्यक्तिगत रिकर्भ आर्चरीमा ऐतिहासिक स्वर्ण तथा नीरज चौहानले पुरुष व्यक्तिगत रिकर्भ आर्चरीमा काँस्य जितेका छन्। यसअघि भारतीय महिला हकी टोलीले चीनलाई 1-0 हराउँदै 44 वर्षपछि एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जितेको थियो। टोलीले सन् 2028 को लस एन्जल्स ओलम्पिकमाका लागि पनि प्रत्यक्ष छनौट हासिल गरेको छ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केन्द्रीय खेल मन्त्री मनसुख मांडवियाले भारतीय खेलाडी तथा टोलीलाई उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि बधाई दिँदै आगामी सफलताका लागि शुभकामना दिनुभएको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आर्थिक उत्थानका लागि सामाजिक समावेशिता प्रमुख आधार रहेको उपराष्ट्रपति राधाकृष्णनको भनाई। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहद्वारा पशुपालन क्षेत्रको विकास र आपराधिक न्याय सुधार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण घोषणा। भारत विश्वको 75-80% अर्थतन्त्र समेट्ने गरी मुक्त व्यापार सम्झौता विस्तार गर्दै अघि बढेको केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलको भनाई। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल IPU को 153 सभामा सहभागी हुन तान्जानिया प्रस्थान। अनि एसियाली खेलकुदमा भारतको स्वर्णिम प्रदर्शन, 85 पदक सहित भारत 4थ स्थानमा। आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्थ्यो समाचार पूरा भयो।
1: কংগ্রেস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার গণেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ। এশিয়ান গেমসে 21টি সোনা নিয়ে পদক তালিকার 4থ স্থানে উঠে এলো ভারত। আজ সোনা এলো পুরুষদের হকি, কুস্তি, ক্রিকেট, গল্ফ ও তীরন্দাজিতে। নিউ চণ্ডীগড়ে তৃতীয় ও শেষ একদিনের ম্যাচে ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে জয়ের জন্য 352 রানের লক্ষ্য রেখেছে। আসি বিস্তারিত খবরে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা পুরোপুরি কার্যকর হলে ভারতের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক ব্যবস্থায় পরিণত হবে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ মন্তব্য করেছেন। মধ্যপ্রদেশের ভোপালে আজ তিনি বলেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হওয়ার পর FIR দায়ের থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত একটি মামলার নিষ্পত্তি 3 বছরের মধ্যেই করা সম্ভব হবে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে নতুন গতি দিতে নরেন্দ্র মোদী সরকার গবাদি পশুপালনের ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো গড়ে তুলছে বলে জানিয়েছেন শ্রী শাহ। আজ রাজ্যস্তরের গোপালক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, এর আওতায় গোবর থেকে বায়োগ্যাস ও জৈব সার তৈরি, দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজারজাতকরণের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।
2: হমনে শ্বেত ক্রান্তি দো কি শুরুয়াত কি হে ইসমে হম

0: आन्ध्र प्रदेशको सत्यवेद मण्डल स्थित श्री सिटीमा रहेको एक निजी औद्योगिक एकाइमा आज भएको बोइलर विस्फोटमा परी 4 कर्मीको मृत्यु भएको छ भने अर्का 1 गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन्। यो विस्फोटक विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेको एउटा कारखानामा भएको हो। 2 कर्मीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने अन्य 3 गम्भीर घाइते भई नजिकैको अस्पतालमा भर्ना गरेकोमा उपचारका क्रममा थप 2 मृत्यु भयो। बाँकी 1 कर्मीको गहन चिकित्सा इकाइ आइसियु उपचार भइरहेको छ। उहाँले मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबु नायडूले यस घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनसेवामा 25 पुरा गरिरहेको छ। यो यात्रा जनसेवाद्वारा देश सेवाको मन्त्र अनि निरन्तर प्रतिबद्धताबाट प्रेरित रहेको छ। सेवा अनि सुशासनको यस दृष्टिबाट प्रेरित भएर सरकार 2047 विकसित भारतको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने दिशामा निरन्तर कार्य गरिरहेको छ। समावेशी विकास अनि सामाजिक सशक्तिकरणको माध्यमबाट यो समर्पण मानिसहरूको जीवनमा परिवर्तन पनि ल्याइरहेको छ। आज हाम्रो विशेष श्रृङ्खलामा हामी तपाईँहरूलाई आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनाको माध्यमबाट यस सोचलाई कसरी कार्यान्वित गरिएको छ भनी बताउनेछौँ।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकारद्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं। यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
2: 1 पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गाने के, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग
0: यो समाचार युट्युबमा @AR कर्सियङ मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अब अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जापानमा सम्पन्न एसियाली खेलमा पदक जित्ने भारतीय खेलाडीहरूलाई बधाई दिनुभएको छ। वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले वित्तीय संयन्त्र पूर्वाधारमा लगानी, ब्याङ्किङ तथा सेवा प्रवाहमा सुधारले भारतको आर्थिक शक्ति र लचिलोपनलाई बलियो बनाएको बताउनुभएको छ। राज्यसभाका उपसभापति हरिवंशको नेतृत्वमा भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल तान्जानिया प्रस्थान गरेको छ अनि आन्ध्र प्रदेशको एक निजी औद्योगिक इकाइमा आज भएको बोइलर विस्फोटमा 4 कर्मीको मृत्यु भएको छ भने 1 गम्भीर घाइते भएका छन्। आकाशवाणीबाट समाचार पूरा भयो। भोलि बिहान 7:25 मा समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। सुन्दै गर्नुहोस् आकाशवाणी।

0: भारतलाई पूर्ण रूपमा विकसित राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग युवाहरूको स्वास्थ्य र मानसिक तन्दुरुस्तीलाई जोड्नु रहेको छ। माई भारत युथ पोर्टल मार्फत सञ्चालित यस अभियानमा 125 भन्दा अधिक आध्यात्मिक संस्थाहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, औद्योगिक समूहहरू र शैक्षिक संस्थाहरूले पनि सहकार्य गरिरहेका छन् सर।
1: हजुर हजुर,
2: यसै विषयमा म यो भन्न चाहन्छु कि यस अभियानमा केवल अवेरनेस प्रोग्राम नभई 100 हप्तासम्म चल्ने जन आन्दोलनको रूपमा डिजाइन गरेको एउटा अभियान हो यो। यसले युवाहरूलाई नशा मुक्त प्रतिज्ञा लिन प्रेरित गर्छ, जसमा 1 करोड भन्दा बढी युवाहरूले देशभरि 10,000 भन्दा बढी स्थानमा एकसाथ प्रतिज्ञा लिएका छन्। 100 हप्ताको कार्यक्रममा जसमा हरेक आइतबार युवा नेतृत्वका गतिविधिहरू आयोजना गरिन्छ। गतिविधिहरूमा खेलकुद प्रतियोगिताहरू हुन्छ, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला रचनात्मक प्रतियोगिताहरू पनि, स्ट्रिट प्लेहरू, जागरूकता अभियान, समुदाय आधारित संवाद र सकारात्मक जीवन शैली प्रवर्धन पनि गरिनेछ।
1: हजुर हजुर, र यसमा म हाम्रा सबै श्रोताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू पनि यस अभियानले जोडिनुहोस् र आफ्नो गाउँ घर छर छिमेकमा युवाहरूलाई नशा मुक्त बनाउने यस अभियानसित जोडिनुहोस्। यो एउटा देशको निम्ति आवश्यक मात्र नरहेर यो दूरगामी परिणामकारक अभियान हो र नशा मुक्त युवा भारत निर्माण र विकसित भारत संकल्प 2047 अभियान बारे चर्चा गर्न आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो यसको निम्ति दीपा राणाज्यू र चित्रा आलेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद सर,
2: नमस्कार।
1: श्रोतागण, यो कार्यक्रम तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल @AIR कर्सियङ, ट्विटर ह्यान्डल एक्स।
3: श्रोताहरू, अबको क्रममा आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समप्रसारण गरी सुनाइरहेछ
4: समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने GST, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
5: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY.
6: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
5: In quarter 1, gross NPAs of banks are at multi-decadal low.
4: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि PM मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
7: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
4: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
4: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
10: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
7: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
10: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
11: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
10: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मिथ के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मिथ की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
12: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
4: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
13: लहरा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला

0: तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। इतना कुछ था दुनिया में लड़ने झगड़ने को, पर ऐसा मन मिला कि जरा से प्यार में डूबा रहा और जीवन बीत गया। साहित्य के आकाश पर कुछ हस्ताक्षर ऐसे होते हैं जिनकी रचनाएं समय की धूल में धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि वक्त के साथ और अधिक प्रखर होती चली जाती हैं। इस वर्ष हम भारतीय कविता के शिखर पुरुष कवि रत्न कुंवर नारायण का जन्मशती वर्ष मना रहे हैं। कुंवर नारायण का संपूर्ण रचना कर्म इस बात का साक्षी है कि एक संवेदनशील रचनाकार अपने युग के सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ से किस प्रकार संवाद स्थापित करता है। चक्रव्यूह, आत्मजयी, अभिज्ञ और कुमार जीव तक उनकी कविताओं में पौराणिक कथा संदर्भों के माध्यम से आधुनिक समाज के जटिल अंतर विरोधों और मानवीय विडंबनाओं का बेहद गंभीर अंकन मिलता है। पर वहाँ कविता भी है। वो जहाँ एक ओर मनुष्य के नितांत एकांत और आंतरिक संघर्ष पर विमर्श करते हैं, वहीं दूसरी ओर युग जीवन की उथल पुथल को भी पूरी प्रामाणिकता के साथ अपनी कविता का मुख्य स्वर बनाते हैं। कुंवर नारायण के इसी सृजनात्मक लेखन शैली के अलग अलग अंतः सूत्रों पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामेश्वर राय।
1: कुंवर नारायण भाषा के स्तर पर, विचार के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर हमें समृद्ध करते हैं कि उनकी भाषा ठहरी हुई भाषा नहीं है। जिस तरह से हिंदी कविता में छायावाद की भाषा को आप फ्रेम कर सकते हैं, आप उसको पढ़कर कह सकते हैं कि ये छायावाद की भाषा है या ये प्रसाद की भाषा है, ये महादेवी की भाषा है, कुंवर नारायण की रचनाएं

0: जहाँ पर वो जीवन के सामान्य अनुभवों को दर्ज करते हैं, वहाँ बोलचाल की भाषा भी है। तो आप देखेंगे कि कुंवर नायर की कविताओं की भाषा परतदार भाषा है, जिसमें तत्समता भी है, जिसमें उर्दू भी है और जिसमें बोलचाल की भी है। निर्भर करता है कि वो कविता किस विषय पर, किस इलाके में लिखी गई है। मोटे तौर पर हम लोग ये मान कर चलते हैं कि भाषा एक अलग किस्म की चीज़ है और अंतर्वस्त्र कुछ अलग किस्म की चीज़ है। जिस प्रकार किसी भी छिलके को उसके फल से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से किसी भी रचना को उसकी भाषा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। दरअसल जो अनुभूति है, जो विचार है, वो तो भीतर है, वो घटित हो रहा है रचनाकार के अंदर। जब भी वह रूप लेगा, जब भी वह बाहर आएगा, जब भी वह अभिव्यक्त होगा, तो साहित्य में उसका एकमात्र माध्यम भाषा है। किसी दूसरी कला में भाषा अपेक्षित नहीं है, न मूर्ति में, न चित्रकला में, न संगीत में। केवल साहित्य है जिसकी सत्ता ही भाषा पर निर्भर करती है। इस तरह से जब भी अनुभव बदलेगा, जब भी संबंध बदलेंगे, जब भी दृष्टिकोण बदलेगा, तो निश्चित रूप से भाषा बदलेगी।
1: कुंवर नारायण की भाषा में संकोच, शालीनता और एक गहरी मध्यम आँच थी। मानो वे शोर से किसी दूर एकांत में बैठकर खुद अपने ही वजूद से बहस कर रहे हों। आज जब हमारी युवा पीढ़ी एक अजीब से मानसिक भंवर और लगातार पीछा करते सेल्फ डाउट से गुजर रही है, तो कुंवर नारायण की यह ठहरी हुई लेखन शैली एक मुकम्मल इलाज की तरह सामने आती है। वो हमें सिखाते हैं कि हर उलझन का तुरंत जवाब पाना जरूरी नहीं, कभी कभी सवालों के साथ चुपचाप जीना भी एक बड़ी बौद्धिक ताकत है। पर अब इस दार्शनिक था से बाहर निकलकर साहित्य के कुछ और पन्ने पलटते हैं, एक दूसरे अध्याय का रुख करते हैं। साहित्य लेखन में शालीनता और तहजीब के नाम पर हमेशा से कुछ तयशुदा लकीरें खींचती जाती हैं, खास तौर पर तब जब बात एक स्त्री के लिखने, बोलने और सोचने की हो। लेकिन उन तमाम गढ़ी हुई सीमाओं को अपने बेबाक अक्खड़ कलम से बीच से चीर देने का हुनर अगर किसी ने सबसे पहले आजमाया तो वो थी इस्मत चकताई। सुनिए हमारी ये प्रस्तुति, कागजी है पैरहन।
2: आने वाली 24 तारीख उर्दू कथा साहित्य की उन ग्रैंड डेम की याद को समर्पित है जिन्होंने पितृ सत्तात्मक साचो को पहली बार बौद्धिक धरातल पर चुनौती दी।
3: बदायूं के रूढ़िवादे कुनवे की तंग दीवारों से लेकर जिंदगी भर की आजमाइशों तक इस्मत का वजूद मुसलसल बगावत था।
2: छुई मुई, बैलेंस शीट और उनके बहुचर्चित उपन्यास टेढ़ी लकीर ने उस मध्यम वर्गीय यथार्थ को कागज पर उतारा जिससे मुख्य धारा का साहित्य अक्सर आंखें चुरा लेता था।
3: उन पर अश्लीलता के इल्जाम मढ़े गए और अदालतों के कटघरे खड़े किए गए।
2: मगर अदालत में पेशियों के उस दौर के बीच भी सादत हसन मंटो के साथ उनकी वो बेपरवाह संगति इस बात की गवाही थी कि वो किसी भी कानूनी पहरे से दबने वाली कथाकार नहीं थी।
3: और आगे चलकर जब वक्त ने उनके इस विद्रोही साहस के महत्व को स्वीकार किया तो साहित्य में उनके इस अनूठे अवदान के लिए उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी सम्मान से भी अलंकृत किया गया।
2: अदब की इस महफिल में इस्मत चुगताई के तीखे फलसफे और उनकी कहानियों के ताने बाने को अपनी दस्तकारी से सजा रहे हैं कलाकार उदित यादव और आमना।
4: जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खिलने में है निखत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं।

0: किस्मत से मेरी पहली मुलाकात के नक्श अभी तक दिलो दिमाग में महफूज हैं। बहुत ही सादा लिबास में थी, छोटी कन्नी की सफेद धोती, सफेद जमीन का काली खड़ी लकीरों वाला चुस्त ब्लाउज, हाथ में छोटा पर्स, पाँव में बगैर एड़ी का ब्राउन चप्पल, मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक, छोटे मगर घुंघराले बाल, जरा सा मुस्कुराने पर भी गालों में गड्ढे पड़ जाते थे।
1: इस्मत पर लिखने के दौरे पड़ते हैं, ना लिखे तो महीनों गुजर जाते हैं, पर जब दौरा पड़े तो सैकड़ों सफे उसके कलम के नीचे से निकल जाते हैं। खाने पीने नहाने धोने का कोई होश नहीं रहता, बस हर वक्त चारपाई पर कोहनियों के बल औंधी लेटी अपने टेढ़े मेढ़े आराब और इमला से बेनियाज खत में कागजों पर अपने ख्यालात मुंतकिल करती रहती है। टेढ़ी लकीर जैसा तूल तवील नॉवल मेरा ख्याल है इस्मत ने कुछ 7-8 नशिस्तों में खत्म किया था। उसका कलम और उसकी जबान दोनों बहुत तेज हैं। लिखना शुरू करेगी तो कई मर्तबा उसका दिमाग आगे निकल जाएगा और अल्फाज बहुत पीछे हाफते रह जाएंगे। बातें करेगी तो लफ्ज एक दूसरे पर चढ़ते जाएंगे। शेखी बगाड़ने की खातिर अगर कभी बावर्ची खाने में चली जाए तो मामला बिल्कुल चौपट हो जाएगा। तबीयत में चूंकि बहुत ही उजलत है, इसलिए आटे का पेड़ा बनाते ही सिकी सिकाई रोटी की शक्ल देखना शुरू कर देती है। इस्मत की तबीयत में जिद है, बिल्कुल बच्चों की सी। पहले शादी से इनकार करती रही, जब आमादा हुई तो बीवी बनने से इनकार किया। बीवी बनने पर जो तो रजामंद हुई तो माँ बनने से मुनकिर हो गई। तकलीफें उठाएगी, सोबतें बर्दाश्त करेगी, मगर जिद से कभी बाज नहीं आएगी। मैं समझता हूँ ये भी उसका एक तरीका है जिसके जरिए वो जिंदगी के हकायक से दो चार होकर बल्कि टकरा कर उनको समझने की कोशिश करती है। वो कहती है,
0: भाई मैं बोल्ड इसलिए हूँ क्योंकि भाइयों के साथ पली थी। सीना, पिरोना, काढ़ना और बुनना, इन सब चीजों में मेरा कभी जी ही नहीं लगा। और रोने, गला फाड़कर चिल्लाने में हम सब भाई बहनों को खासी महारत हासिल थी। हमारी अम्मा बौखला कर हमारा कहना मानने पर मजबूर हो जाती। हमें अपनी इस ताकत का शिद्दत से एहसास था। बच्चे रो पीट कर ही अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं।
1: अम्मा के हाथ अगर पड़ जाऊं तो खामखा ही मार देती थी। हम पूछते कि भाई क्यों मारा है, हमने कुछ भी शरारत नहीं की, तो जवाब में कहती, आज नहीं की तो कल करोगी। लेकिन फिर भी बड़ी प्यारी लगती थी। पता नहीं इतना मारती थी तब भी मुझे क्यों इतनी अच्छी लगती थी।
0: खैर साहब, बचपन जैसे तैसे बीता। ये कभी पता न चला कि लोग बचपन के बारे में ऐसे सुहाने राग क्यों अलापते हैं। बचपन नाम है बहुत सी मजबूरियों का, महरूमियों का। बड़े होकर एक पोजीशन बनती है जो नाइंसाफियों का मुकाबला करने की ताकत बख्शती है। 8 बड़े भाई बहनों की शफकतें झेलने के बाद बड़े होने का बेचैनी से इंतजार था। जब घर में छोटे भांजे भतीजे पैदा होने लगे तो अपनी बुजुर्गी का एहसास निहायत तसल्ली बख्श साबित हुआ।
1: मेरी बहनें निहायत सुघड़ थीं। उर्दू, फारसी, कुरान शरीफ के अलावा कशीदकारी, बुनाई, सिलाई और खाने पकाने में मशा, और मैं निहायत फुहड़। भाइयों की नकल में पेड़ों पर चढ़ना, साइकिल दौड़ाना, हर जगह मुझे अपनी शिकस्त का एहसास होता। उन्हें भी मुझ पर तरस क्यों आता आखिर? मैं अब्बा की शह पर उनकी बराबरी पर तुली हुई थी। अजीम भाई हमेशा के बीमार ही थे। मैं लड़की होने की वजह से भाइयों के साथ ना निभा सकती थी और वो बीमारी की वजह से मजबूर थे। पर साहब उन्हें कुछ मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने मुझे बताया कि लड़के तो बैल होते हैं, तुम बैल क्यों बनो, पढ़ाई में तुम उनसे टक्कर लो, वहां तुम उन्हें मार लोगी। फिर उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ाना शुरू किया। 2 बार मुझे डबल प्रमोशन दिलवाया। उनकी शह पाकर मैंने कुरान का तर्जुमा, हदीसें और इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी और अपने अब्बा के बुजुर्ग दोस्तों के बीच बैठकर अपनी ताजा ताजा मालूमात का इजहार करना शुरू किया। मगर अब्बा की शह पाकर मैंने अपने वालिद के मुअम्मरी दोस्तों की सोहबत में बहुत कुछ सीखा।
0: मेरी अम्मा को मेरी हरकतें एक आंख ना भाती थी। मेरे अंजाम की उन्हें सख्त फिक्र थी। ये मर्द मार बातें औरतों को जेब नहीं देती। वो इतनी गहराई से ना इन बातों को समझती थी और ना समझा सकती थी। मगर मुझे मालूम हुआ कि

0: की अम्मा क्यों डरती थी। ये मर्द की दुनिया है, मर्द ने बनाई और बिगाड़ी है। औरत एक टुकड़ा है उसकी दुनिया का, जिसे उसने अपनी मोहब्बत और नफरत के इजहार का जरिया बना रखा है। वो उसे मूड के मुताबिक पूछता भी है और ठुकराता भी है।
1: मैंने अपनी जिंदगी के नहायत दिलचस्प और नहायत ही कठिन लम्हे लिखने के सहारे झेले हैं। ये कलम मेरा रज़ाक भी है और हमदम भी, तन्हाई का बोलता चालता दोस्त भी। उसकी मौजूदगी में मैंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। मैं जब चाहूँ इस उड़न खटोले के जरिए जिसे चाहूँ बुला लूँ, और जब वो आए तो जी चाहे उनसे कहूँ, हंसाऊँ रुलाऊँ या जी जलाकर खाक कर दूँ। फिर मूड आए तो पुर्जा पुर्जा करके फना कर दूँ, कठपुतलियों की तरह पुतले बनाकर जैसे चाहूँ नचाऊँ।
0: मैंने चोरी चुपके जब अंगारे पढ़ी, रशीद आपा ही मुझे एक ऐसी हस्ती नजर आई जिन्होंने मुझमें खुद एतमादी पैदा की। मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। अलीगढ़ की छोटी जहर आलूद फिजा में वो बड़ी बदनाम थी। मेरी साफगोई को उन्होंने सराहा और फिर मैंने उनकी बताई हुई किताबें चाट डाली। फिर मैंने लिखना शुरू किया और मेरा ड्रामा फसादी साखी में छपा। उसके बाद और कहानियां लिखी और कोई कहानी रद्द नहीं हुई। एकदम मुझ पर एतराज होने लगे, लेकिन रिसालों से मेरी कहानियों की मांग बढ़ने लगी। मैंने एतराजात की कोई परवाह न की। मंटो के फोन से मालूम हुआ कि उस पर भी मुकदमा चला है, उसी कोर्ट में उसी रोज उसकी भी पेशी है। फिर सफिया और मंटो दौड़े आए। मंटो निहायत हशाश बशाश, जैसे किसी ने विक्टोरिया क्रॉस दे दिया हो। मैं दिल में बड़ी नादिम थी, बजाहिर बहादुरी जता रही थी, मगर मंटो से मिलकर शाहिद की भी ढारस बन गई और मुझे बड़ी तसल्ली हुई। दिल में तो धकड़ पकड़ हो रही थी, मगर मंटो ने वो शह दी कि मेरा भी डर निकल गया। कहने लगा, अरे एक ही तो मार्खे की चीज लिखी है आपने। अमा शाहिद, तुम भी क्या आदमी हो यार, तुम भी चलना, तुमने जाड़ों का लाहौर नहीं देखा।
1: चुप करो मंटो साहब, सफिया नर्वस होने लगी और फिर मुगलजात के भरे खत खुत का तांता लग गया। ऐसी अनोखी पेजदार भारी भरकम गालियां कि मुर्दे के सामने बक दी जाएं तो उठकर भाग जाए। मुझे ही नहीं, मेरे पूरे खानदान को, शाहिद को और मेरी 2 महीने की बच्ची को, कि उसकी पैदाइश की खबर कहीं छप गई थी। मुझे अपनी डाक से डर लगता था, जैसे लिफाफों में सांप बिच्छू और अजगर बंद हों। डरते डरते खत खोलती, अगर सांप बिच्छू दिखाई पड़ते तो 2 लफ्ज पढ़कर खत जला देती। अगर शाहिद के हाथ खत पड़ जाता तो फिर तलाक की नौबत आ जाती। मुझे अपने जुर्म का एतराफ था, सिर्फ मंटो एक ऐसा वाहिद इंसान था जो मेरे इस बुजदिलाना रवैये पर भड़क उठता था। मैं खुद अपने खिलाफ थी और वो मेरी हिमायत करता था। तरक्की पसंदों ने ना मुझे फटकारा ना मेरी तारीफ की, और मुझे इस रवैये से बड़ा इत्मीनान होता था। मैं खुशकिस्मत हूँ कि जीते जी मुझे समझने वाले पैदा हो गए। मंटो को तो पागल बना दिया गया, तरक्की पसंदों ने भी उसका साथ ना दिया। मुझे तरक्की पसंदों ने ठुकराया नहीं और ना ही सर पर चढ़ाया। मैं बहुत आसूदा हाल थी, फिल्मों से हमारी बहुत अच्छी आमदनी थी और अदबी मौत या जिंदगी की परवाह ना थी। और वैसे मैं तरक्की पसंदों की खुद भी चमची बनी हुई थी और बड़े जोर शोर से इनकलाब ला रही थी।
0: पतरस बुखारी ने इस्मत के बारे में लिखा था कि हमें इस बात को तस्लीम करने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि इस्मत की शख्सियत उर्दू अदब के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कुछ ऐसी पुरानी फसीलों में रखने डाल दिए हैं कि जब तक वो खड़ी थी कई रास्ते नजरों से ओझल थे। इस कारनामे के लिए उर्दू जानने वालों को ही नहीं बल्कि उर्दू के अदीबों को भी उनका एहसान मंद होना चाहिए।
1: इस्मत फुहश निगार है, हल्का हल्का तंज और मजा इस्मत के स्टाइल की मुमताज खूबियां हैं। इस्मत तलवार की धार पर चलती हैं, उन पर बहुत कुछ कहा गया है और कहा जाता रहेगा। कोई उन्हें पसंद करेगा कोई नापसंद, लेकिन लोगों की पसंदीदगी और नापसंदीदगी से ज्यादा अहम चीज इस्मत की तख्लीकी कुव्वत है। बुरी भली जैसी भी है कायम रहनी चाहिए। अदब का कोई जुग्राफिया नहीं, उसे नक्शों और खाकों की कैद से जहां तक मुमकिन हो बचाना चाहिए।
0: कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं,
1: तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं,
0: तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी।

0: ना है तुझे।
1: अभी आपने सुनी इस्मत चकताई के बागी और बेखौफ जीवन पर आधारित एक जीवंत दास्तान कागजी है पैरहन, जिसे प्रस्तुत किया उदित यादव और आमिना ने। साहित्य की इस दुनिया के भी अजीब रंग हैं। अगर आप इस्मत आपा के उपन्यासों और कहानियों के पन्नों को पलटें, तो वहां चांद कोई आसमान का सजावटी खिलौना नहीं, बल्कि वो किरदारों के अकेलेपन का खामोश गवाह बनता चलता है। जैसे उनके बहुचर्चित उपन्यास टेढ़ी लकीर में शमन का कमरा हो, या फिर उनकी कहानियों में कोठरियों की घुटन, जहां आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा और खिड़की से झांकता वो चांद ही पात्रों की तन्हाइयों का इकलौता हमराज होता है। शरद पूर्णिमा की रात, जब गगन धुले हुए दूधिया प्रकाश से नहाया सा रहता है, जब इस रात की ठंडी और रेशमी चांदनी आंगन की सिलवटों को छूती है, तो हवा में एक अजीब सा नशा और खामोशी घुल जाती है। ये सिर्फ शरद का चांद नहीं, बल्कि सदियों से कवियों की रूह में उतरता वो जादुई एहसास है, जो हर दिल की अनकही धड़कनों को अल्फाज दे जाता है। महाकवि कालिदास के मेघदूत से लेकर रीतिकाल के कवियों तक, और आधुनिक काल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में, जहां चांद कभी सपने की तरह उतरता है, या फिर हरिवंश राय बच्चन या शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में वो तन्हाई और प्रेम का हमसफर बनकर चमकता है। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हो या फिर सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति चित्रण, हर बड़े रचनाकार ने शरद पूर्णिमा के इस चांद को अपनी संवेदनाओं का आईना बनाया है। आइए चांद और कविताओं के इसी रुपहले ताने बाने को सुनते हैं हमारी अगली लघु प्रस्तुति, चांद कविताओं का हमसफर में। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की एक कविता है, चांदनी चुपचाप। चांदनी चुपचाप सारी रात सूने आंगन में जाल रचती रही, मेरी रूपहीन अभिलाषा अधूरे पन की मध्यम आंच पर नचती रही, व्यथा मेरी अनकही आनंद की संभावना के मनश्चित्रों से परचती रही। मैं दम साधे रहा, मन में अलक्षित आंधी मचती रही, प्रातः बस इतना कि मेरी बात सारी रात उघड़ कर वासना का रूप लेने से बचती रही।
2: शरद पूर्णिमा की रात, आसमान में खिला चांद और उसकी चांदनी। भारतीय साहित्य में चांद का ये रूप सिर्फ प्रकृति का सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक बेहद ही आत्मीय माध्यम भी रहा है।
3: भक्ति काल के कवियों से लेकर आधुनिक दौर के रचनाकारों तक, चांद ने प्रेम, विरह, स्मृति और जीवन के अनेक भावों को शब्द दिए हैं। कविता में चांद के इसी बदलते रूप और उसके साहित्यिक उपख्यानों पर एक नजर डाल रही हैं डॉक्टर रिजवाना फातिमा, पूर्व शिक्षिका, दिल्ली विश्वविद्यालय।
4: हिंदी कविता में चांद केवल आकाश में चमकने वाला एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि वह प्रेम, सौंदर्य, विरह, स्मृति, कल्पना, अकेलेपन और मानवीय संवेदनाओं का एक बहुआयामी प्रतीक है। चांद को किस रूप में देखा जाता है? ये कवि की दृष्टि उसकी भावभूमि, सामाजिक संदर्भ और काव्य परंपरा पर निर्भर करता रहा है। चांद को सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता रहा है। चांद का उज्ज्वल चेहरा, उसकी शीतलता, उसकी आभा, प्रेम

0: कोमलता तथा आकर्षण को वो व्यक्त करती है। लेकिन इसके साथ ही भक्तिकालीन कविता की अगर मैं बात करूं तो सूरदास, उन्होंने वहां पर चांद को खिलौने के तौर पर प्रयुक्त किया है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, कृष्ण जिद कर रहे हैं अपनी माता से कि वो चांद रूपी खिलौना लेना चाहते हैं। चांद जो है वो प्रतीक रहा है मानवीय संवेदनाओं का, जो मानवीय रिश्ते हैं। हम तिकाल से निकल कर के रीतिकालीन कविता की तरफ जब आते हैं तब देखते हैं कि वहाँ पर चांद जो है वो विरह और अकेलेपन के साथ में प्रिय व्यक्ति की भी याद दिलाने का कार्य करता है, नायिका के मुख के सौंदर्य की भी बात करता है। उदाहरण के तौर पर बिहारी की कविता को लिया जा सकता है, कहते हैं पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास नित प्रति पुण्य रहे आनन उपजास, मतलब कि नायिका का जो मुख है उसकी आभा के सामने चंद्रमा की रोशनी भी फीकी पड़ रही है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि नायिका के घर के आसपास जो आसपास हमेशा ही पूर्णिमा बनी रहती है क्योंकि उसका मुख का उजाला ही इतना देख है। चांद से भी श्रेष्ठ नायिका का मुख है ये। केशव ने रामचंद्र काम में सीता के मुख के सामने चंद्रमा को दोषयुक्त सिद्ध किया है। तो कुल मिलाकर के जो चांद है वो हमें अलग अलग रूपों में आता हुआ दिखाई देता है कविता।
1: शरद पूर्णिमा के चांद का भारतीय साहित्य और परंपरा में विशेष आध्यात्मिक महत्व भी है। शरद पूर्णिमा की चांदनी में छिपे इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए सुनिए दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर निशा नाग पुरोहित को।
2: शरद चांदनी मेरा अंतः स्पंदन तुम भी क्षण क्षण जी लो। यह जीवन केवल वही जीवन नहीं है जो इस लोक में बिताया गया है। शरद चांदनी का महत्व आध्यात्मिक भी है। इस आध्यात्म में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। कृष्ण रूपी परमात्मा, गोपिकाएं रूपी आत्माएं और उन सब का मिलजुल कर होने वाला नृत्य अर्थात शरद चांदनी का यह सुंदर उत्सव बहुत आगे तक आध्यात्मिकता को छू लेने वाला है। मणिपुरी रास लीला में शरदोत्सव का या शरद रास का विशेष महत्व है। आगे अपनी कविता में लिखते हैं, शरद चांदनी बरस रही है अंजुली भर पी लो तुम भी क्षण क्षण जी लो। शरद ऋतु यही तो वो है जिसकी कवियों ने लेखकों ने बहुत प्रशंसा की है।
3: सदियां बीत गईं, दौर बदल गए, लेकिन चांद को निहारने और उसे शब्दों में पिरोने का सिलसिला आज भी जारी है। कभी वो प्रेम का प्रतीक बनता है तो कभी विरह और स्मृतियों का।
1: ये चांद है जो हर दौर में कवियों की कल्पना को रोशनी देता रहा है और आज भी कविताओं में अपनी जगह बनाए हुए है।
3: काव्य वाचन स्वर सौम्या बाजपेयी, छात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय। साहित्य भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं हूँ प्रांजल।
4: चांद कविताओं का हम सफर। अभी आपने सुनी ये विशेष लघु प्रस्तुति। ऋतुओं के बदलते रंगों के बीच जब हवाओं में त्योहारों की आहट और मौसम में गुलाबी सी ठंड घुलने लगती है तो ये महीना अपने साथ केवल ऋतु परिवर्तन की ही अनुभूति नहीं लाता बल्कि साहित्य की उन अमर स्मृतियों को भी हमारे सामने लाता है जिनकी आभा समय बीतने के साथ और गहरी होती जाती है। वो नाम हमारी भाषा में होते हैं, हमारी स्मृतियों में होते हैं और कभी कभी हमारे अपने अनुभवों में भी। सबसे पहले स्मरण कथा सम्राट प्रेमचंद का, जिन्होंने साहित्य को गांव, खेत और आम जीवन की धड़कनों से जोड़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने कविता को रूढ़ बंधनों से मुक्त कर उनमें स्वाधीन चेतना, विद्रोह और करुणा के स्वर भरे। श्रीलाल शुक्ल, जिन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से समाज की विरूप विसंगतियों को सामने रखा। भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने अपनी रचनाओं में मनुष्य के भीतर के द्वंद्व और जीवन के जटिल प्रश्नों को स्वर दिया। आधुनिक हिंदी का

कहानी और वैचारिक बहस को नया तेवर देने वाले पुरोधा राजेंद्र यादव, असरालुल हक मजाज, जिनकी शायरी में रूमानी संवेदना के साथ अपने समय की बेचैनी भी दर्ज है। तन्हा दिलों और संघर्षशील इंसानों के पक्ष में बेबाक और खूबसूरत गीत लिखने वाले साहिर लुधियानवी, और अपनी सादगी भरी जुबान से जिंदगी के फलसफे को आम आदमी तक पहुंचाने वाले नायाब रचनाकार निदा फाजली, इन सभी साहित्यिक विभूतियों की स्मृति और उनके अमूल्य साहित्यिक अवदान को नमन करते हुए साहित्य भारती का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्री रफी खान का वायलिन वादन। देवास घराने की प्रतिष्ठित संगीत परंपरा और उस्ताद रजब अली खान की शिष्य परंपरा से जुड़े श्री रफी खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को गहराई और प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। एक कुशल वायलिन वादक के रूप में वे अपनी उत्कृष्ट बोइंग तकनीक, स्वर की शुद्धता और राग विधान की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। उनके संगीत में तकनीकी सटीकता और भावपूर्ण अभिव्यक्ति का सुंदर संतुलन दिखाई देता है, जिससे उनकी प्रत्येक प्रस्तुति आत्मीय और प्रभावशाली बन जाती है। श्री रफी खान एकलवादन और संगत में भी समान रूप से दक्ष है। लहरा और लयकारी पर उनकी विशेष पकड़ है। वे सपाट तान, छूटकी तान और गमक जैसी तानों को अत्यंत कुशलता और सहजता से अपनी प्रस्तुतियों में पिरोते हैं। वर्ष 1994 से आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टाफ आर्टिस्ट रहे श्री रफी खान अगस्त 2026 में ए ग्रेड वायलिन वादक के रूप में आकाशवाणी अहमदाबाद से सेवानिवृत्त हुए। देश के अनेक प्रमुख शास्त्रीय संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दे चुके रफी खान अपनी भावपूर्ण और नवोन्मेषी वायलिन प्रस्तुतियों के माध्यम से देवास घराने की संगीत परंपरा को निरंतर समृद्ध और प्रतिष्ठित कर रहे हैं। आज की इस प्रस्तुति में श्री रफी खान के साथ तबला पर संगत कर रहे हैं श्री हेमंत जोशी। श्री रफी खान अपने वादन का आरंभ करेंगे राग मारू बिहाग से। इसकी विलंबित रचना विलंबित एक ताल में तथा द्रुत रचना द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।
1: This is Akashwani. In tonight's broadcast of National Program of Music, we bring you a violin recital by Shri Rafi Khan. Hailing from the distinguished Devas Gharana in the lineage of Ustad Rajab Ali Khan, Rafi Khan carries forward a rich legacy of Hindustani classical music with depth and authenticity. A virtuoso violinist, he is acclaimed for his mastery of bowing technique, tonal purity and deep understanding of raga grammar. His music beautifully balances technical precision with emotional expression, making each performance both soulful and elevating. Equally proficient as a soloist and an accompanist, Shri Rafi Khan is known for his expertise in lehra and laikari, seamlessly weaving taans like sapat, chut ki taan and gamak with finesse. A staff artist of Akashwani Ahmedabad since 1994, Shri Rafi Khan retired from Akashwani Ahmedabad as an A-grade violinist in August 2026. Having performed at major classical festivals across India, he continues to uphold and enrich the Devas Gharana tradition through his evocative and innovative violin renditions. In tonight's broadcast, he is accompanied on the tabla by Shri Hemant Joshi. Shri Rafi Khan begins his recital with Raag Maru Bihag. Vilambit composition is set to Vilambit Ek Taal and Drut composition is set to Drut Teen Taal respectively.

0: आपने अभी सुना राग मारू बिहाग। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब श्री रफीक खान प्रस्तुत करेंगे राग जोग। इसकी रचनाएं विलंबित एक ताल, द्रुत एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।
1: You just heard Raag Maru Bihag. Continuing the program, Shri Rafiq Khan will now present Raag Jog. The composition is set to Vilambit Ek Taal, Drut Ek Taal and Drut Teen Taal respectively.

0: आपने अभी सुना राग जोग। इसी के साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत श्री रफीक खान के वायलिन वादन का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। उनके साथ तबला पर संगत कर रहे थे श्री हेमंत जोशी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति आकाशवाणी अहमदाबाद द्वारा की गई। इसी के साथ ही हम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस प्रसारण को यहीं समाप्त करते हैं। यह प्रसारण आप तक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहुंचाया गया।
1: You just heard Raag Jog. With that, we conclude the violin recital by Shri Rafiq Khan in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Shri Hemant Joshi. This program was produced by Akashwani Ahmedabad. With this, we come to the end of the National Program of Music. This broadcast came to you from Delhi Station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस NPA कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
1: एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट अबाउट 766 बिलियन US डॉलर।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms, and consistent reforms. Addressing the fifth Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code, and the four labor codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
1: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter 1. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low and foreign exchange reserves stand about $766 billion.
4: Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita BNS is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gopalak Sammelan in Bhopal today. In Andhra Pradesh, 4 workers were killed and another was critically injured in a boiler explosion at a private industrial unit in Sri City of Satyavedu Mandal today. The blast occurred inside a factory in the special economic zone. 2 workers died on the spot while 3 others were critically injured and shifted to a nearby hospital. 2 of the injured later succumbed to their injuries during treatment. The remaining worker is undergoing treatment in the intensive care unit. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed shock over the incident. India won 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals at the Asian Games in Japan today. In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend their men's gold and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. For India, Captain Harmanpreet Singh netted 2 goals while Jugraj, Hardik and Shailanand scored 1 goal each. In men's cricket, India won the gold, defeating arch rivals Pakistan by 19 runs in the T20 final at Nishin. Wrestler Aman Sehrawat clinched the men's 57-kilogram gold after edging out North Korea's world champion Chong Song Han 11-7 in a fierce final. Kumkum Mohod won the individual gold medal in the women's recurve archery event. In golf, Pranavi Urs became the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in the women's individual title. India also bagged silver in the team event. Wrestler Antim Panghal sealed a silver medal in the women's 53-kilogram category. Deepak Punia won bronze in the men's 97-kilogram freestyle wrestling event after defeating Mongolia's Ganghuya Ganbatar. Archer Neeraj Chauhan got bronze in the men's individual recurve event. With these impressive performances, India has climbed to fourth position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 85, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the men's cricket team on retaining their title at the Asian Games 2026. In a series of social media posts, Mr. Modi said that this is indeed a joyous occasion for the nation. He also wished the team members for their future endeavours. Mr. Modi said, "The 2026 Asian Games have been truly special for Indian hockey." He congratulated the men's hockey team on retaining the Asian Games gold with a commanding victory in the final. The Prime Minister also congratulated Pranavi Sharat Urs on winning India's first ever gold in women's individual golf at the Asian Games. Mr. Modi also congratulated Kumkum Anil Mohod on becoming the first Indian